के शब्द भगत पीपा जी दे जेड़े कि अपने शब्द विच आपां नूं उपदेश करदे हन कि जो तुसी बाहर देखदे हो ओ तुहाडे अंदर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, पर जो खोजे सो पावे। जेड़ा अपने अंदर झाती मारदे ओनू ही कुछ लभदे। ते नाल ए भी कहा, पीपा प्रणवे परम तत् है, सतगुर होए लखावे। के सतगुरु की कृपा भी जरूरी है, ताई इंसान अपने अंदरों ही उसनु पा सकता है। भगत पीपा जी जिन्ना दा ए शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है, भगत पीपा जी जिन्ना दा जीवन त्यागमय रहे, आप गगनौर दे राजे सन, राजभाग कोल सी, सारे सुख सन, पर भाग चंगे ने कि परमेश्वर वल भी ध्यान सी। साधा संतां दी बड़ी सेवा करया करदे सन। एक वरी कुछ महात्मा इन्हां दे राज विच आए ने। महात्मा दी सोभा सुन के उन्हां नूं अपने महल विच बुलाया, कीर्तन करवाया, महापुरशां नूं प्रशादा छकाया, सेवा कीती। संत महापुरश बड़े प्रसन्न होए, कहन लगे, राजन तुहाडे विच सेवा भाव बहुत है, असी बड़े प्रसन्न हां, पर ए दसो तुहाडा गुरु कौन है? क्योंकि गुरु तो बगैर गति नहीं हुंदी। ते राजा पीपा कहन लगे, महापुरशो, गुरु तां मैं कोई धारण नहीं कीता, पर तुसी कृपा करो ते दसो मैं किन्नू गुरु धारण करा। ते महापुरशा ने कहा, राजन ऐस वक्त काशी बनारस दे विच ब्रह्म ज्ञानी स्वामी रामानंद जी रहिंदे ने, तुसी उन्हां कोल चले जाओ ते उन्हां नूं अपना गुरु धारण कर लो। स्वामी रामानंद प्रवान भगत ने जिन्हां दा एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चित ना चले मन पयो भंग। संतां दे कोलों स्वामी रामानंद दी उपमा सोभा सुनी, स्वामी जी कोल जाण दी तैयारी कीती।

सेवादार दरवाजे ते खलो गया। राजा पीपा अपने लश्कर दे नाल स्वामी रामानंद जी दे आश्रम

स्वामी जी नु कहो गगनौर दा राजा पीपा आया वो दर्शन करने चाहता है। सेवादार स्वामी रामानंद जी दे कोल गया, बेनती कीती है स्वामी जी गगनौर दा राजा पीपा आया वो दर्शन करने चाहता है। स्वामी रामानंद जी राजे की प्रीख्या लैनी चाहते सन कि इहदे मन विच सच्चा प्यार है कि नहीं। सेवादार नूं कहा राजे नूं कहो ओ राजा असी फकीर फकीरां दा ते राजे दा मेल की, उहनूं कहो दर्शन नहीं हो सकते। सेवादार ने आके कहा राजन स्वामी जी कहंदे ने तू राजा असी फकीर तेरा ते साडा मेल की, दर्शन नहीं हो सकते। सेवादार कोलों ए गल सुनी पर मन दे विच सच्चा प्यार सी। जिन्ने हाथी घोड़े सन सारे दान कर दिते, सोने दे कड़े ला के ओ भी दान कर दिते, कीमती वस्त्र भी दान कर दिते, सादे कपड़े पाले

उन्हें भी सादे कपड़े पाले ते क्या स्वामी जी मैं भी तुहाडे नाल रहना। फिर राजे ने कहा सेवादार नूं हुण बेनती करो कि हुण पीपा राजा नहीं रहा, वो एक गरीब है एक फकीर है, वो दर्शन करने चाहता।

राजे पीपे ने सब कुछ दान कर दिता, फकीरां वाले कपड़े पा ले ने, सोना चांदी सब कुछ गरीबां विच वंड दिता। वो कहिंदा मैं हुण गरीब हां, मैनू दर्शन चाहिए ने। पर स्वामी

राजे नु कहो जे उन्हें दर्शन करने ने ते शहर दे बाहर एक खूह है ओदे विच डुब मरे दर्शन हो जाने के।

के पहला कृष्ण भगवान की नगरी द्वारका नगरी चलिया जावे ते भगत पीपा जिड़ा हुन राजा नहीं रहा ओ द्वारका नगरी नु तुर पिया। ओ भगत पीपा जी सानू उपदेश करदे ने भाई ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की दुहाई मैं तुहानू राम की दुहाई देना ओदा नाम जपो क्यों भटकदे हो ना माया ने नाल जाना है ना तुहाडे शरीर ने तुहाडी नाल जाना है एक राम का नाम है जिन्हें तुहाडी सहायता करनी है भाई मैं तुहानू वार वार दुहाई देना राम।

इंसान परमेश्वर की बंदगी करते हैं, वो हमेशा वास्ते अमर हो जाता है। जिस तरह भगत पीपा जी होए ते गुरु अर्जन साहब ने भगत पीपा जी का यह शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज किया। जिथे असी गुरुआं नूं मत्था टेकने आ, भगत पीपे नूं भी।

ज्ञान होया भगत सदना जीव के हुन मास वेचना छोड़ दिता एकाग्र चित होके प्रभु भक्ति विच लग गए ते मन विच इच्छा होई के जगन्नाथपुरी जाके प्रभु दे दीदार करिए यात्रा करके आइए। आप तुर पे रस्ते विच रात पै गई मन विच सोचिया भई चलो कितों पुरुषार्थ करके प्रसाद छक लेंदे हां जां शहर विच गए एक घर जाके बेनती कीती इत्थे एक मुटियार खड़ी सी जो बेनती करके अपने अंदर ले आई महाराज आओ इत्थे ही छक लो प्रसाद ते रात हुण कित्थे जाओगे रात भी इत्थे ही गुजार लो। बड़े प्यार दे नाल भोजन तैयार कीता भगत सदना जी जदों छकन लगे तां कोल बह के पखे दी सेवा कर रही है जिवें पत्नी अपने पति दी सेवा करदी है पर अंदर इस दे जहर भरिया होया सी। इसकी उम्र छुटेरी है आदमी इसका वडेरी उम्र का सी ते रोगी सी जिस करके इसका मन बेईमान हो गया। संत जी हुण किधर जाओगे इत्थे ही रात कट लो ना विशाही कर दिती। भगत सदना जी प्रभु सिमरन विच जुड़े हुए अज इत्थे आराम करन लगे ता अद्धी रात नू हार शिंगार करके आ गई। कहन लगी आप आए हो तो हुण मेरी भी श्रद्धा पूरी करो। कामातुर होके हाव भाव करन लगी ते भगत सदना जी झट उठ के खड़े हो गए आख्या तू तो मेरी भैन है ते भैन नू इस तरह नहीं करना चाहिए तू मेरी भैन दे बराबर है असी इस नरक विच नहीं पै सकते। ओ मन विच उसने सोचिया भाई शायद मेरे बीमार पति नू वेख के डर गए ये डर गए हन मेरे बीमार पति नू वेख के झट जाके अपने पति का सिर वड दिता ते सिर लैके आई। कहन लगी संत जी ऐसे दा ही डर सी ना आ मैं मार दिता क्योंकि नित दा रोगी है इसने मरना ही सी और मैं तुहाडे नाल साधुआं वाले कपड़े पाके मैं तुहाडे नाल जिंदगी बितावांगी। भगत सदना जी जान गए कि पता नहीं किस जन्म दा पाप दा बदला ये सामने आ रहे है कलंकनी है सानू हथ ना लावी दुष्टनीए तेरा संसार ते आया त्रिग है जेरे अपने जीवन नू पवित्र नहीं रखदे उना दा त्रिग कार है संसार ते आउना उचारण करो श्री वाहिगुरु। बड़े तरले ले बड़िया मिन्नतां कीतियां पर भगत जी नू क्रोध आ गया चंडालनी है कल जुगने अगे ही मैं पापां दा भागी हां दर बदर ठोकरां खा रहा भगवान दे द्वार ते अपने मंदे

युग में कीर्तन प्रधाना गुरुमुख जपिए लायत्याना परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी गुरु नानक देव जी तो लेके 19वीं सदी तक गुरुवाणी का कीर्तन तंती साज जिवे के रबाब सरंदा ताउस सरंगी आदि राही हुंदा सी। 20वीं सदी दे आरंभ होने ते गुरुवाणी का कीर्तन पच्छम दे साज हारमोनियम ते होना शुरू हो गया, जिस करके तंती साज अलोप हो गई। तंती साजा राही गुरुवाणी दे कीर्तन दी जो इलाही धुन निकलदी है ओ हारमोनियम ते नहीं निकल सकदी, जिस करके सिख जगत ने अकाल अकैडमी बड़ू साहिब दे बच्चियां नूं कहा कि तुसी कीर्तन विच मुड़ सत्कार योग पुरातन तंती साज सुरजीत करो। सात संगत जी, संत अतर सिंह जी महाराज मस्तु आने वाले दी लाई हुई फुलवाड़ी अकाल अकैडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब दे बच्चियां लई अरदास करो कि आप दे ए निमाने बच्चे गुरु साहिब दे बख्शिश कीते पुरातन तंती साज रबाब सरंदा ताउस सरंगी ते कीर्तन करके गुरु साहिब दी बख्शिश लैन। हुण जिस शब्द दा गायन असीं करन जा रहे हां ए पावन शब्द तन गुरु नानक देव जी महाराज दा राग बसंत हिंडोल विच उच्चारण कीता है। बसंत हिंडोल महला पहला। राजा बालक नगरी काची दुष्टा नाल प्यारो दोए माई दोए बापा पड़िए पंडित करो बिचारो स्वामी पंडता तुम देहो मती किन विद पावो प्राण पति रहाओ पितर अगन वनस्पत मौली सागर पंडे पाया चंद सूरज दोए घर ही पितर ऐसा ज्ञान ना पाया राम रवंता जानिए एक माई भोग करे ताके लखन जानिए खिमा तन संग्रहे कहे आ सुन है ना खाया मन है तिना ही सेती वासा प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा।

हर जियो निमाणिया तू मान। हे हरि वाहिगुरु, तू निमाणिया दा किवें मान है? पातशाह कहिंदे ने आड दम को छिपरो, अद्धी कौडी दा छिंबा होयो लखीना, लखां दा हो गया। पर किवें? पाई साहिब भाई गुरदास जी कहिंदे ने

कबीर गुरु धारण कर लिया ते स्वामी रामानंद जी कहिंदे ने एक दिन उठे की वेखदे ने स्वामी रामानंद जी अमृत वेले उठ के गंगा इशनान जांदे ने कहिंदा क्यों ना ऐसा होवे कि मैं इन्हां तो पहले उठ पवां जे इन्हां कोलों कुछ लैणा ही कबीर इन्हां तो पहले उठ ते जिस रस्ते जांदे ने उस रस्ते विच लम्मा पैगा हो सकदा है तेरे ते नजरे करम हो जाए कबीर बरसाती ओ सिंगड़ा जिहा रस्ता ओहदे विच लम्मे पै ने स्वामी रामानंद जी पौया ते सवार अमृत वेला तुरे आउंदे हुण जिस वेले स्वामी रामानंद जी आए स्वामी रामानंद जी दे चरणां दी छो होई हुण स्वामी रामानंद जी ने कहा पता नहीं कौन कहे इन जापदा जिवें कोई मृतक शरीर है ते साध संगत चरणां दी छो लगन दी देरी सी अज अपने मुखो एक बचन कहा उठ राम के लोका राम को बस इनी गल कहण दी देरी सी कबीर ने माला फड़ ली राम राम राम शुरू है ते साध संगत हुण भगती करदे आ जिस वेले उन्हां उच्चियां जातां वाले ने तकिया हुण मन च ख्याल आ गया कि कबीर दा गुरु केड़ा है कबीर नूं दिखिया किन्ने दिती है ए माला किवें फड़ के बह गया ए ते नाम नहीं जप सकदा क्योंकि उस वेले उन्हां पंडतां ब्राह्मणा ने ए उपदेश दे दिता कि उच्चियां जातां वाले ही नाम जप सकदे ने छोटी जात वाला नाम ही नहीं जप सकदा साध संगत हुण ध्यान देना पुछ कीती तेरा गुरु कौन है कहन लगा जी स्वामी रामानंद जदों स्वामी रामानंद जी का नाम लिया कहन लगे ए हो ही नहीं सकदा ओह ते शूदर नूं मत्थे नहीं लांदे तेनू किवें दिखिया रिड़ती कहन लगा मेरे ते यकीन नहीं ते जाके स्वामी नूं पुछ स्वामी रामानंद जी पास आए कहन लगे स्वामी जी कबीर कदों शिष्य बनाया कदों दिखिया दिती जे कहन लगे कबीर मेरा शिष्य नहीं है मैं दिखिया नहीं दिती कहन लगे महाराज ओह ते तुहाडा नाम जप रहे कहन लगे बुलाओ कबीर नूं हुण कबीर नूं बुलाया ना जिस वेले स्वामी रामानंद जी ने एक पर्दा तान लिया एक पासे स्वामी रामानंद जी ने एक पासे कबीर है विच पर्दा है ते साध संगत मैं पर्दे दा जिक्र करदे आं पर्दा एक भरम है

जो भीख मंगावे ता क्या कट जाई, तू हर पज मन मेरे पद निर्बाण, बहर न होए तेरा आवन जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी अंदर समुची मनुखता दी जीवन कल्याण दी गल कीती गई है। गुरमत इस ख्याल नाल सहमत नहीं कि संसार विच दो चार बंदे जड़े ने वो उच्चे सुचे पवित्र जीवन वाले हो जान, ते बाकी दी दुनिया उसे तरह कीड़िया मकौड़िया वांग जमदी मरदी रहे। गुरमत इस आशे नूं प्रगट करदी है कि सारा संसार जड़ा है इस दे उधार दा बंदोबस्त वाहिगुरु अकाल पुरख ने कीता होया है। इसे आशे दी व्याख्या बाणी विच कीती गई है। बड़े चिर तों मनुख दे सामने यह समस्या है कि यह जड़ी दुनिया की दौलत है, संसार की माया है, इहदे नाल मैं किवें वरतना। ते धर्म दे धर्मी तो लोग आम तौर ते गल कहिंदे ने कि जिन्ना चिर इहनूं छड्डोगे नहीं उन्ना चिर रब दे नाल ते जुड़ ही नहीं सकदे। जदों गुरमत नूं चंगी तरह समझने आ तां इह गल साडे पल्ले पैंदी है कि गुरु साहिब ने इस माया नूं त्यागण दा कोई उपदेश नहीं दिता। गरीबी है या अमीरी, थोड़ी माया या बहुती, इस गल दा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि माया दे हुंदियां होयां उस वाहिगुरु अकाल पुरख नाल अपने चित नूं जोड़ना। भाई साहब भाई गुरदास कहिंदे ने, कहिंदे ने गुरसिख जोगी जागदे माया अंदर करन उदासी। आंदे ने गुरसिख योगी हन, ऐसे योगी के माया विच रहिंदे होए भी ओ चितन ने जागदे होए ने समझदे ने कि इस माया ने साडे नाल नहीं जाना। वो कहिंदे ने भी ये माया परमात्मा ने बनाई है, माया तो उसने संसार बनाया है, इसलिए किते भी मनुख चला जाए मनुख दा शरीर मनुख दी अपनी होंद भी माया नाल है, माया दा पिछा नहीं छड़दी, माया तो बिना यह संसार हो नहीं सकदा। इस करके गुरु साहिब ने कहा इनू नफरत करन दा कोई मतलब नहीं, ये परमात्मा ने बनाई है। गुरु अमरदास पातशाह ने श्री राग विच एक बचन कीता है, सतगुरु कहिंदे ने माया मोह मेरा प्रभ कीना आपे भरम भुलाए। बाणी नूं जदों ध्यान नाल पढ़िए साडियां कई समस्या हल हो जांदियां, पर असीं बाणी वल ध्यान नहीं दिंदे, बंदियां वल ध्यान दिंदे। मुश्किल साडी आए कहिंदे फलाणा बाबा कह गया, बस स्यापा पै जांदा सानूं। भी गुरु ग्रंथ साहिब गुरु तुहाडे कोल मौजूद है, उस नाल गल करके पुछ के वेखो कि गुरु साहिब की कहिंदे आ। बंदा गलत हो सकदा पर असीं बंदे दे मगर लगण वास्ते तैयार हो जांदे आ। साहिब कहिंदे ने माया मोह मेरा प्रभ कीना आपे भरम भुलाए, मनमुख कर्म करें नहीं बूझे बिरधा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग में है चानण कर्म वसै मन आए। गुरबाणी की रोशनी नाल ए गल

एतन होती खाक निमाणी गोर करे एतन होती खाक निमाणी गोर करे अज मिला शेख फरीदा तत्म पूंजणिया अज मिला शेख फरीदा तत्म पूंजणिया मनो मचंदणिया जे जाना मर जाइए कुम ना आइए झूठी।

लेखन कबीरा तुरख केल के पुड़िया बांदी दे दिल से चार को पेखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विचों जाए

चले चलना हार विचारा ले मनु गंडे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठी नू जिमें पुछे।

नाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे कह कबीर सुमरे प्राणी कैद कबीर सुनो रे प्राणी

जानी जीव तला ब्योहार गए जको तो जानो जीव तला ब्योहार गए जको तू जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुख समान हर गुण गाओ मना सतगुरु सेव प्यार

तर्त आकाश पताल है चंपुर विनाशी पाशाह उमराव खान ताए डेरे जासी रंग तरंग करीब मस्त

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलू मंग रहे हैं। ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलती हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने, पर गल कमाल दी है, मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनियां ही उन्हां दियां मंगां, पर हे परमात्मा तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगां कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है, ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ा, हां मंगना चाहिए, पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे, कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे है। हे परमात्मा, जिन्ने मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगां, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है, पर सब दियां मंगां तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पैक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो, कि निर्धन नू, कमजोर नू कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं, इसलिए कहिंदे ने मान मंगे आ। फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगे आ, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके, उहनू सांभ सका। धन लक्ष्मी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू, गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा, इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे, परमात्मा दे धन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत अन्ना जी कहिंदे ने, घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी चाहीदी है। ते कहिंदे ने फिर सुत, हे परमात्मा पुत्र भी घर विच चाहीदा, क्योंकि पुत्र भी एक निशान है, उहदा भी घर विच होना बड़ा जरूरी है। धन बहुता होवे, हर खुशी घर विच होवे, ते जे घर पुत्र नहीं, संतान नहीं, ते तां भी दुख है, उह भी बर्दाश्त नहीं हुंदा। इस तरह हे परमात्मा, हर कोई तेरे कोल मंग मंग रहा है। मन मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे, किस लिए मांग रही? साजनो तू मीत मेरो, गह तेरे सबके। तू मेरा सज्जन नहीं, तू मेरा मित्र नहीं, उस मित्र होने के नाते मैं ये मंगा तेरे कोलो मंग रही हां। सतगुरु कहिंदे ने मंग जायज होगी, क्योंकि तू नू अपना सज्जन बना ले, अपना मित्र बना ले। वाकई ही भाई, जी उन्हू अपना बना के मंगे ते हर दाद चोली।

फिर मंगन जाइए। ऐसी मंग ना करिए जे दोबारा मंगनी पै जाए। कहते ने मंगना भी है तो एको बार मंग लो, क्योंकि परमात्मा को जो असी मंगना है वह मिल जाना है। ते मंगन लगे इस गल नू सोच लेना चाहिए कि मैं मंग की दे। हुण साहिब सानू एक गल समझांदे ने

मंगली है। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जेड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा ना दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही। मंगती का पहला गुण है जी, कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ए पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तो एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही। ख्याल करो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे। बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलो मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,

तू उतना चिर ही सुखी वस सकेंगी जितना चिर जीव आत्मा तेरा साथी तेरे नाल है। जदों तेरा साथी जीव आत्मा उठ के चल पवेगा तदों ही काया तू मिट्टी विच रुल जावेंगी जो सह प्रमाण कर रहे हैं।

एक आया जितना चिर तेरा खसम जीव आत्मा तेरे घर विच वसदा है सारे लोकी तेनू जी जी आखदे हन सारे तेरा आदर सत्कार करदे हन पर सह फरमाउंदे हन हे काया हे जिंदे जदों तेरा निमाणा कंत जीव आत्मा उठ के तुर पवेगा तदो कोई भी तेरी बात नहीं पूछेगा जो साहेब अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं।

पंचम पातशाह अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं। ओ मनुख भागा वाला है जिससे मन विच तेरा प्यार जाग पिया, जिससे मन विच तेरे दर्शना दी तांग पैदा हो गई, जेड़ा विराग विच तेरे दीदार करना चाहता है, जिसके मन विच विराग है उसनु ही प्रभु मिल पैंदा है। ओ प्रभु दे दीदार कर सकता है जिसके मन विच विराग है। रायपुर दे रहन वाले सोना अते मोहन जिन्हां नु भक्ति दा रंग चढ़िया है, दिन रात ठाकरां दी पूजा करदे हन, निता पर ठाकरां नु इशनान करवा के धूप बत्ती करके कीर्तन विच जुड़ जांदे हन, मगन हो जांदे। एक दिन ठाकरां नु इशनान करवाउण वास्ते जल लिया रहे हन, तां रस्ते विच एक गुरु दा प्यारा गुरसिख जो जख्मी हालत विच पिया है ते मुखों उचार रहा है कि कोई एक घुट पानी दा पिला जा, ता इन्हां ने सुनिया अते रुक गए। ता फिर की आख्या, असी ता ए पानी ठाकरां दे इशनान वास्ते ले जा रहे हां, ए पानी जूठा हो जावेगा ता फिर तुर पे। फिर गुरसिख ने आवाज दिती, भाई एक घुट पानी दा पिला जाओ। फिर दोनों जने रुके, वापस मुड़े कि इस नु घुट पानी दा पिला दे। फिर आखदे हन कि जे इस नु घुट पानी दा पिला दिता ए पानी जूठा हो जावेगा, इस जल दे नाल असी ठाकरां नु इशनान कराउणा। फिर तुर पे ता गुरसिख ने आख्या, तुसी एक घुट पानी दा नहीं पिलाया, अच्छा जिस ठाकर वास्ते तुसी जल ले जा रहे हो ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। आज गुरसिख दे मुंह चो ए आवाज निकली, ए आवाज सोना ते मोहना दे कन्ना विच पई, ता ए आवाज गूंज उठी, ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। घर आए, ठाकर नु इशनान कराया, कीर्तन करन लगे, पर आज मन नहीं जुड़ रहा। कन्ना विच ओ आवाज आ रही है, ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त मन ना जुड़िया, सोचिया कि उस गुरसिख नु घुट पानी पिला आई, हो सकता है साडा मन जुड़ जावे। ता उथे पहुंचे की तकिया, जो गुरसिख पानी मंग रहा सी अज शरीर छड़ गए, श्वास निकल गए हैं, मन बहुत उचाट होए कि असी इस नु एक घुट पानी दा नहीं पिला सके, सचमुच एक बड़ा वड्डा पाप कर बैठे। ता पुछिया कि ए गुरसिख कौन है, पता लगा कि ए कलगीधर पातशाह दा अनन सिख है, प्यार वाला सिख है, जो संगत शहर कलगीधर पातशाह दे दर्शन करन जा रही सी, डाकुओं ने संगत ते हमला कर दिता, ता इस गुरसिख ने डाकुओं नाल मुकाबला कीता, ता डाकुओं ने इस नु जख्मी कर दिता, जो कि पानी मंगदा मंगदा शरीर छड़ गए। ता इन्हां दोहां दे नेत्रां विचों अथरू वग तुरे कि असी इतने निभागे, इतने निकरमे कि असी इस नु एक घुट पानी दा भी नहीं पिला सके। अज मन विराग विच आ गए, मन भर गए कि किसे तरीके सहज कलगीधर पातशाह दे दीदार करिए ते अपनी भुल बख्शाई। ता अज दोनों दे मन भर गए, दर्शना दी तांग पैदा हो गई, उस सज्जन नु लभण तुर पे हन। सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंती।

सतगुरु रायपुर विच आए चरण पाए बेंत संगता ने दर्शन कीते बख्शा हासिल कीतियां ता इना दोना नु पता लगा सोना ते मोना के साहिब कलगीधर पातशाह इथे आए हन चरण पाए हन क्यों ना असी भी चल के दीदार करिए। मन विच उबाल उठिया दोनों पचे के चल के साहिबां दे दीदार करिए। पर जिस वक्त साहिबां दे दीदार करन आए पर साहिब अगे नहीं हन दर्शन नहीं होए ता फिर कन्ना विच ओ आवाज पई कि ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता जिस वक्त सह वापस जान लगे ता ए दोनों जने अद्धा कु मील अगे जाके खलो गए कि एथों दी साहिब लंघन गए ता असी दर्शन कर लवांगे। पर संगत ता उस रस्ते तो लंघी पर सतगुरां ने अपना घोड़ा मोड़ लिया खेतों दे रस्ते दी लंघ गए ता फिर कन्ना विच ए आवाज गूंजी ठाकुर दर्शन नहीं देवेगा। ता हुण इन्हां दे मन विच ए निश्चा हो गया कि सचमुच सतगुर दर्शन नहीं देने। ता दर्शना दी होर लालसा वधी मन विराग विच आ गया ता अरदास कीती पातशाह एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकते कृपा करो एक घड़ी भी तेरे तो बगैर नहीं रह सकते एक पल जुगां दे समान बीत रहा है जो सहबी अपनी बाणी द्वारा प्रमाण कर

प्रसन्न, तू बहुत सेवा कर द। केसरा सिंह ने बेनती की थी, पाछा ए सेवा मेरी नहीं, ए सेवा छोटे माली दी है जो बहुत गरीब हन। आप दे चरणा नाल प्यार कर दे हन, पर बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल सेवा कर दे हन, ए सेवा ओना दी। ता साहबा ने एक दम अखां बंद कर लिया, ते मुख विचों साहबा दे ए आवाज निकली के ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ए आके सह वापस चले गए। ता केसरा सिंह ने सोना ते मोना नूं दसिया कि साहबा ने ए बचन कीते हन कि ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। ता दोनां दे नेत्रां विच जल वह तुरे। सावण भादो दी झड़ी लग गई ते आख्या, पाछा सानू दीदार नहीं होणगे। अज मन वैराग विच आया, अच्छा पाछा आप दी रजा है, जे दर्शन नहीं ता सेवा ही सही, आप दे दर ते सेवा करके दिन गुजार लवांगे। इन्हां दा नैन कटोरे भर गए, नैन तरसन लग गए, जो सहबी अपनी बाणी द्वारा फरमान कर रहे हैं। नैन तरसन दर्श पर

गोविंद सिंह सच्चे पातशाह भी उस्तत कर दिए हुए हैं। आप कहते हैं धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह तो शहनशाहों का शहनशाह है, तेरे समान संसार विच हो।

नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह आप क्यों दे हम गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू सब दी मदद करने वाला है जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह करता और आप दी मदद अकाल पुरख वाहेगुरु आप करता है सात सगत बोलो श्री नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह आख्या धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु का खजांची है जो अकाल पुरख वाहेगुरु के खजाने विच बख्शीशा हैं तू उन्हां नूं वंडन वाला है सात सगत बोलो श्री हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते हैं कि धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तू अकाल पुरख वाहेगुरु नूं जानिया है इस वास्ते संसार विच तू महाराजियां दा महाराज है तेरे वर्गा संसार विच कोई होर महाराज कोई राजा है ही नहीं इस वास्ते मैं सारे संसार नूं छड़ के तेरे चरणों विच आया हां

चोली किसे ने नहीं भरी। इस वास्ते मैं तेरे दरबार विच आया और सुने जो तेरे दर ते आउंदा है उदी चोली कदी खाली रह नहीं जाऊंगी। ओ सदा तेरे दरबार तो चोलियां भर की जाऊंदा। सत सहित बोलो श्री। इस वास्ते हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह शाहे शहनशाह।

देख रहा पता गुरु गोविंद सिंह, जानू दिल रहा गुरु गोविंद सिंह। धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह, तेरी वर्गी कोई तेज नहीं चला सकता संसार विच, और तू सारिया दा दिलों का हाल जानता है क्यों।

देख रहा पता गुरु गोबिंद सिंह, जानू दिल रहा रहा गुरु गोबिंद सिंह, साहिबे साहिबे अकलील गुरु गोबिंद सिंह, जिले हक तसलील गुरु गोबिंद सिंह। आप कहते हैं तू दुनिया दे ताज दा मालक है, संसार दा मालक है, और अकाल पुरख वाहेगुरु दे पानी नू मनन वाला। सात सगत बोलो श्री, क्योंकि तेरे जैसा संसार ते होर कोई शहनशाह ना होया और ना होएगा। तू भगत भी है, तू दानी भी है, और तू शुरवीर भी है। भगत एडा है कि जो आनंदपुर का किला उजड़ गया, पिछे मुगल सेना लगी हुई, 500 के करीब सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के नाल, जाउंदियां जाउंदियां जो अमृत वेला होया तो साहब जी ने आख्या भाई दया सिंह कितने दिन हो गए हैं कीर्तन नहीं सुने, वेखना भाई अमृत वेला हो गया, आशा दी वार दा समा हो गया, कोई है कीर्तनी है पर सानू कीर्तन सुनाओ। सात संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह जी कहन लगे पातशाह पिछे दुश्मन फौज आ रही है, इस वेले तां किते दूर निकल जाइए चंगा है, ते आप कीर्तन सुनन दी कह रहे हो। आख्या हां दया सिंह, कीर्तन आत्मा दी खुराक है, आत्मा का भोजन है। कितने कु सिंह हन नाल? आख्या गरीब निवाज कोई लगभग 500 सिंह हन नाल। आख्या फिर अद्धे कीर्तन विच बह जाओ, ते अद्धे थोड़ी दूरी ते मोर्चा ला के खड़ार दियो सारे हन, जे दुश्मन दल आवे ते उसनू रोक के रखन। कीर्तन आरंभ हो गया, उत्थे दुश्मन दल ने चढ़ाई कर दिती, सिंह लड़ रहे हैं, इत्थे साहब जी अडोल कीर्तन बह के सुन रहे। सत सगत बोलो श्री। इत्थे आशा दी वार दी समाप्ति हुई, सो करे जे तिसे रजाए, सो करे जे तिसे रजाए सुध। साहब जी ने अकाल पुरख के चरणों में शीस चुकाया, ताई टांगू ने आके खबर दिती खुफिए कि साहब जी आ दुश्मन दल मारो मार करता आ रहा है, ते जेड़े लगभग 250 सिंह अगे मोर्चे ते खिलारे सन सारे शहीद हो गए। सत संगत बोलो श्री। भाई दया सिंह दे नैन कटोरे वाग आए, और गरीब निवाज एक कीर्तन दे पिछे 250 सिंह शहीद करा दिता। साहब जी कहन लगे दया सिंह आ बाकी कितने बच गए हैं? आख्या लगभग 250। आख्या ए भी 250 शहीद हो जाते, दया सिंह तू भी शहीद हो जाता, मैं भी शहीद हो जाता, लेकिन असी जो इत्थे बह के अज उस अकाल पुरख दे चरणों दे नाल कीर्तन विच जुड़े हैं, उसकी जड़ी भगती की है, असी ए सौदा सस्ता कीता है। सत सगत बोलो श्री। भगत एडे ते आख्या दानी तेरे वर्गा संसार ते होर कौन है, पिता नु शहीद करा दिता धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नु, आप दे उस वेले 9 साल की उम्र सी। हिंदू धर्म की रखिया की खातर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने शहीदी पाई, आनंदपुर का किला उजड़ गया, 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इन्हां सिखां दे उपरों धर्म की रक्षा की खातर चारे बच्चे शहीद करा दिते। माता नूं कुर्बान कीता धर्म की खातर, सारा परिवार खेरू खेरू हो गया, आ सारा सरबंस दान कर देता, तेरे वर्गा संसार ते होर दानी कौन होएगा। सत सगत बोलो श्री।
ਆਖਿਆ ਔਰ ਸ਼ੁਰਵੀਰਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜਾਉਣ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਉਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਿਆ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਹ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁਰਵੀਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੁਰਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਸੱਵਰ ਖੇਚ ਲੇ ਤਸਵੀਰ ਜੇ ਤੁਝ ਕੋ ਰਿਸਾਈ ਹੈ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਮਸਲਤ ਪਰ ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹੋਂ ਸੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹੋਂ ਸੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮਿਲਾ ਤੁਝ ਸਾ ਮੁਝੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ